बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर और इट हैपेंस के सफर में आपका साथ सताक्षी दे रही है। कई बार रिश्तों में आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, आपको हर चीज में खुद की गलती नजर आती है, आप किसी भी चीज को लेकर लाइफ में क्लियर नहीं होते, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। और जो भी लाइफ में हो रहा है, जो भी कुछ भी गलत है, उसका ब्लेम आप खुद पर लेना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो याद रखिए कि आप एक सही रिश्ते में नहीं हैं। आपका कंट्रोल जो है वो आपने किसी और के हाथ में दे दिया है, क्योंकि प्यार का मतलब आपको कंफ्यूज्ड करना नहीं होता है, आपको कंट्रोल करना नहीं होता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज करना होता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ाना होता है, है ना। तो अगर कोई इंसान, कोई बंदा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको कंफ्यूज्ड कर रहा है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है, इसका मतलब कि यार वो प्यार तो नहीं है, आप एक गलत रिश्ते में बंधे हुए हैं। फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, है ना, तो चाहे दोस्ती है, चाहे मोहब्बत है, चाहे रिश्तेदारी है, कुछ भी है, आपको उससे निकलने की जरूरत है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी, मेरे साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

अच्छा आप इंजॉय करें आप सताक्षी के साथ रिजु प्रस्वानी 1701 वाले पर। देखिए एक सच्चा इश्क सच्ची मोहब्बत जो है उसमें ड्रामा कम होते हैं। हम कहते हैं ना कि जो ड्रामे वाला प्यार है ना, जो दिखावटी प्यार जो ज्यादा दिखाया जा रहा है उसमें सच्ची मोहब्बत है। लेकिन नहीं, प्यार का मतलब हमेशा एक इंसान की आपकी लाइफ में होने का, आपसे मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि वो प्यार हर वक्त वो दिखाता घूमे। कुछ लोग चाहते हैं कि यार वो इंसान जो है हमारी ज़िंदगी में हो, जैसे सामने वाला है वो अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो केयरिंग है, या वो उस प्यार को हमेशा हर जगह दिखाता है। देखिए प्यार जब दिखावा बन जाता है तो वो प्यार रहता नहीं है। असली मोहब्बत तो वो है जो खामोश रहकर निभाई जाती है ना। तो दिखावा चाहे शोहरत का हो, इज्जत का हो, या फिर मोहब्बत का हो, कभी सही नहीं होता। और चलिए इसी बात पर, हमारे दिखावे फ्री वाले प्यार के नाम पर एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए एंड सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 पर।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे

0: किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
0: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: अरे ओ खिलाड़ी, आज संडे को फ्री, बोलो लोगे हमारे संग सेल्फी। What the heat?

लाइफ में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? वो जिनके पास पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, पोजीशन है? बिल्कुल भी नहीं। लाइफ में सबसे सबसे सबसे ज्यादा खुश वो लोग रहते हैं जो भूल जाते हैं, अच्छा उसने मेरे साथ ये किया था, उसने ये कहा था, भाई साहब उन्हें याद ही नहीं रहता कि जो है किसने क्या कहा था। और यकीन मानिए मैं सच कह रही हूँ, ये भूलने वाले जो लोग हैं, आए हाय, मतलब वो सबसे ज्यादा खुश नसीब हैं, वो सबसे ज्यादा खुश हैं, बिकॉज लाइफ में उन्हें ये टेंशन नहीं है कि भाई इससे बदला लेना है, इसने वो कहा था, वो गांठ बना के रखनी है, बात हुई और वो भूल गए, है ना। लाइफ को बेसिकली ऐसे लोग जीते हैं, लाइफ में आगे का देखते हैं, इस वक्त में वो रहते हैं, इस वक्त को याद रखते हैं, पिछला क्या बीता है, पिछला क्या गुजरा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उससे मतलब नहीं है। बहुत सारी कड़वी यादें वो दिन गुजरने के साथ ही भुला दिया करते हैं। ऐसे लोगों से ज्यादा खुशनसीब और खुश इंसान आई डोंट थिंक की कोई और है। ऐसे लोगों के नाम जिनको है भूलने की बीमारी, प्ले करती हुई अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ।

क्या लेडीज अक्सर ये कंप्लेन करती हैं कि हस्बैंड्स या बॉयफ्रेंड्स या जिस रिलेशनशिप में हैं वो लोग जो है उनका ख्याल नहीं रखते और उनसे हमेशा झगड़ा करते हैं और बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं है उन्हें। तो देखिए, आज मैं इस बात को थोड़ा सा ज़रा भाई क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है, और बल्कि जो एक रिसर्च हुआ है, हालिया रिसर्च, उसमें ये पाया गया है कि मेल्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब वो उस औरत से बात करते हैं या उस लेडी से बात करते हैं, उसके शब्द उनके कानों में पड़ते हैं जो उनके दिल के बहुत ही करीब है, जो उनको सुकून देती है ना। वो लेडी जिसके साथ रहकर उन्हें सुकून मिलता है, अगर वो सिर्फ इतना भी पूछ ले कि तुम कैसे हो, दिन कैसा गुजरा, तो वो पूरे दिन की जो थकान है वो उसे निकालने के लिए, उसे उतारने के लिए वो एक लाइन वो काफी है। और जैसे ही ये शब्द जो है सिर्फ हेलो या उसकी आवाज उनके कानों में पड़ती है तो उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो दिन भर की थकान, वो फ्रस्ट्रेशन, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है ना। हाँ, तो बस ये चीज़ें जो हैं ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं और धीरे धीरे हमें समझ में आती हैं या नहीं भी आती हैं, हम नहीं समझते, बट फैक्ट्स बहुत सारे हैं जो आपको एक अलग ही एहसास करवाते हैं। और उसी एहसास के नाम, लेडीज खुश हो जाइए कि आपकी आवाज़ सुनकर भाई किसी को बड़ा सुकून मिलता है। और उसी आवाज़ के नाम ये अगला ट्रैक है, इसे सुनिए और हमारे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर, आप हैं सताक्षी के साथ।

0: अरे मैडम आइए आइए, कैसी हैं आप? ये रहा आपकी शादी का कार्ड। अरे वाह,
1: लाइक इट?
2: या इट्स नाइस।
3: कुछ भैया खुद डिजाइन करके गए थे?
0: ये रहा डिजाइन।

कभी आपने सोचा है कि किसी का एक मैसेज आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे बन जाता है? किसी का हाय या सिर्फ भी आपका पूरा दिन बना देता है। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन उससे बात किए बिना चैन भी नहीं मिलता, सुकून भी नहीं मिलता। जब वो पास ना हो तो दिल बेकरार रहता है उसे ढूंढने के लिए, और उसके पास होने पर दिल को लगता है जैसे उसे सब कुछ मिल गया। तो हाँ, लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ होने से ही आपको स्पेशल फील होता है, जिनके साथ सिर्फ होने से ही आपका दिन बन जाता है, और जिनकी खुशी आपको अपनी खुशी सी लगती है। और ऐसे ही लोगों के नाम ये अगला ट्रैक प्ले कर रही हूँ, इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस, रिजु प्रस्वानी 1701 एम पर।

और फ्रेंड्स, ये था आज एक और इट हैपेंस पे सताक्षी का आपके साथ साथ। आज फिर से हमने कुछ प्यार भरी और बेहतरीन बातें की और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये साथ भी आपको जरूर अच्छा लगा होगा, जरूर पसंद आया होगा। तो कुछ और बातों के साथ, जिंदगी के कुछ खास किस्सों के साथ और हमारी एक नई सुबह के साथ कल फिर से होगी इट हैपेंस में आपके साथ हमारी एक और मुलाकात। आज के सफर से अब लेती हूँ इजाजत। हैव अ ग्रेट डे, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

0: अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਹਾਂ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Hmm.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji ho expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
5: Excuse me, sir. वहाँ पर एक problem हुई है।
6: क्या?
5: ये model नहीं आ रही।
6: क्यों?
5: सर आपकी mobile पर तो phone आया था कि वो नहीं आएगी।
6: ला फोन दे।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा और अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 एम ते जी आरचे संदेश अलग दिन आज पड़े हुए। अगला नाम है जी करण जौहर दा। बॉलीवुड दी दुनिया वे दा एक अजिहा नाम जिन्होंने ना सिर्फ सानू बहुत सारिया यादगार फिल्मा दितियां बल्कि हिंदी सिनेमा नू कितों तो कितों पहुंचाया। करण जौहर नू असी शुरू तो एक खास लुक कैरी करते देखा है, पर फिर जब उन्होंने अपना वजन काफी ज्यादा घटाया ना तो उन्होंने ओजिम्स से मुंजारो वर्गे ड्रग्स लैन का आरोप लग गया। करण जौहर फंकी लुक दे नाल नाल बहुत पतले दुपले लुक दे लई काफी ज्यादा ट्रोल होए सी। खैर करण जौहर ट्रोल अक्सर हुंदे रहिंदे ने पर लुक नूं लैके पहली बारी होए सी।

0: ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸੀਗਾ ਜਾਣੂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸੀਗਾ ਜਾਣੂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਬ ਤੋਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ
1: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूँ?
2: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
4: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365.

सौ पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ दोस्त।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट,
3: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय।
2: वधेरे किफायती रिहायश दी शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। एंड अगेन, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, कैसा फील कर रहे हो, क्या चल रहा है और ये सारी की सारी चीजें जानने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। आप लोग बोलोगे हाँ निविया, वो तो हमें पता ही है कि तुम हो नोजी, तुमको बहुत इंटरेस्ट आता है कि क्या चल रहा है किसी और की जिंदगी में। वेल, किसी और की जिंदगी में क्या चल रहा है उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे लिसनर्स की जिंदगी में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, क्या क्या आप कर रहे हैं, नया नया क्या कर रहे हैं, वो सब जानने में इंटरेस्ट है। सो कॉल मी नोजी और व्हाटएवर, बट आई एम लाइक दैट। जी तो आइए, हैप्पी मंडे आप सबको सबसे पहले तो, और मंडे को सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा अच्छा मजाक कर रही हो क्या, मंडे हैप्पी और वो भी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ब्रेन। या आपको लग सकता है कि ऐसा कुछ हो गया है मेरे दिमाग के साथ, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एम फॉर मंडे, एम फॉर मोटिवेशन, और अपनी जबरदस्ती मोटिवेशन को लेकर हम यहाँ पर पहुंच गए हैं और हम यहाँ पर सबको बताने वाले हैं कि देखिए, हम मजे करने में सबसे आगे हैं, लेकिन अपने सक्सेस को पाने के लिए, अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए भी हम सबसे ज्यादा आगे। सो वी आर गोना डू ऑल दैट, मजे भी, मस्ती भी, काम भी, और अपने सक्सेस को अचीव करना भी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द प्रोग्राम। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल के साथ, और वो रिचुअल है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज का। जी हाँ, वी आर गोना डू दैट, एंड वो हमें हेल्दी रखता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। आइए वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरुआत होगी प्रोग्राम की एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ। एंड सच में ये गाना बहुत ज्यादा प्यारा है, एंड गेस व्हाट, ये ट्रेंड भी कर रहा है हमारी टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट में। तो आइए इसी से शुरुआत करते हैं, कहो तो, फ्रॉम प्रेम कीटाणु।

जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ अब जरा चलते हैं मौसम की तरफ। जी हाँ, आपको पता ही है प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, मतलब अब प्रोग्राम के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, लाइक मौसम, लाइक और भी बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले मौसम की से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के करीब, वहीं अगर बात की जाए अभी की तो 21.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 20.3 डिग्री सेल्सियस के करीब, मतलब ये जो ठंडक है ये आप बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहे हैं। जी हाँ, वहीं अगर बात की जाए रात की तो 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आप देख पाएंगे, और चांसेस ऑफ रेन, मैंने आपको बताया था कि बारिश होने वाली है, और 80% है बारिश। जी हाँ, 80% है बारिश, मतलब 80% इलाके में बारिश होने वाली थी, होने वाली है, हो रही है। आप मुझे बताइए आपके इलाके में कितनी बारिश हुई, हो रही है, या आप अभी भी इंतजार कर रहे हो जैसे कि पहले आपके साथ खेला हो चुका है। जी हाँ, सो एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट, और बारिश में आपको क्या करना पसंद है ये जरूर हमें बताइएगा। इसी के साथ कल यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात भी करते हैं। सबसे पहले ट्यूसडे 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 30% चांसेस बारिश के, मतलब ये जो बारिश है इससे आपको निजात मिलता हुआ दिखेगा आपको। और वेडनेसडे को बिल्कुल कम बारिश होने के चांसेस, मतलब ना के बराबर, 10% विद 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि रात में टेम्परेचर बहुत गिर जाएगा, फिर से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे कितना मधुर सा मौसम हो गया, मजेदार सा हो गया है, सुहाना सा हो गया, राइट? बट देन फिर से जो है ठंड जो है वो वापस आ जा रही है, फिर से जो है ठंड वापस आ जा रही है। आपको लग रहा है कि ओ यार हम करें क्या, अपने सर्दी के कपड़े अंदर रखें या ना रखें, मतलब हमको लग रहा है कि समरी समरी हो गया है, लेकिन ये समर को पीछे करते हुए फिर से जो है ठंडक कह रही है कि नहीं नहीं अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, और फिर से ठंड आ जाती है। जी हाँ, तो बात तो यही है कि अभी कन्फ्यूजन वाला मौसम है, तो अपने कपड़ों को ऐसे ही पहनिएगा कि आप भी कन्फ्यूज हैं, मौसम के साथ साथ आपको भी कन्फ्यूजन है। सो ना पूरी तरह से गर्म ना पूरी तरह से ठंडे, और वैसे ही जो कि आपको इस मौसम में अप्रोप्रिएट रहे। जी ऐसे के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से AI वीडियोस कौन कौन देखता है। जी हाँ, क्योंकि आजकल AI वीडियोस की भरमार हो गई है। कभी आपके YouTube पे, कभी आपके Instagram पे, कभी आपके Facebook पे आप लोगों को AI वीडियोस जो है वो देखने को मिल ही जाती है। पर कभी आपने गेस किया है कि वो जो AI वीडियोस में चेहरे आपको दिखते हैं, क्या वो सच में किसी का चेहरा है या नहीं? Well, इसका जवाब आपको चाइना से मिल सकता है। जी हाँ, सो अपेरेंटली चाइना की AI इकोनॉमी जो है वो क्रिएट कर रही है एक न्यू वे टू अर्न पीपल। जी हाँ, और ये जो है लोग जो है इससे अर्न कर सकते हैं बाय लाइसेंसिंग देयर फेस। जी हाँ, आपने सही सुना। सो जो आपने AI वीडियोस देखी हैं जिनमें आपको चेहरे दिखते हैं, लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा कि ओके ठीक है, ये सच में चेहरा किसी का है या नहीं? वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि अभी क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो ऐसे में वो चेहरे जो है वो AI खुद ही बनाता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के कुछ फीचर्स को इकट्ठा करके और जैसा आप प्रॉम्प्ट देते हैं। बट चाइना में कुछ डिफरेंट ही हो रहा है, क्योंकि AI के अलावा लोग यहां पर अपना फेस जो है वो लाइसेंस कर रहे हैं कंपनीज को, ताकि वो उनका फेस यूज करें और वहां पर वो उससे पैसा कमा सके। जी हाँ, सो पीपल कैन रिपोर्टेडली रजिस्टर एंड लाइसेंस देयर फेशियल लाइकनेसेस फॉर AI जनरेटेड ड्रामास, एडवर्टीजमेंट्स, वीडियो गेम्स एंड अदर डिजिटल कॉन्टेंट। आप बोल रहे होंगे वाह, ये तो कुछ नया ही आ गया। वेल, ये नया नहीं, ये आ गया है, और ऐसे में चाइना से इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन क्या ये सिर्फ चाइना तक रहेगा? ऑफ कोर्स ये चाइना के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर जाने वाला है। सो प्लेटफॉर्म सच एज ACTID एंड न्यूक्लो अलाउ यूजर्स टू क्रिएट वेरीफाइड प्रोफाइल्स, चूज परमिटेड यूजर्स एंड इन सम केसेस सेट देयर ओन प्राइजेस। जी, और अगर आप लोग प्राइजेस सुन लोगे देन यू विल बी लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब इतने ज्यादा पैसे जस्ट बाय लाइसेंसिंग देयर फेस? वेल या, सो अपेरेंटली 700, यानी कि आप कह सकते हो कि $1,000 से लेके लिटरली $1,500 तक लोग जो है वो अर्न करते हैं पर मंथ। जी हाँ, बाय लाइसेंसिंग देयर फेस। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और सुना, आई वाज लाइक वाओ वाओ, मतलब मुझे इतना तो पता था कि लाइसेंस जो है वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई तो लोग कर सकते होंगे, कुछ कंपनीज ऐसा करती होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पीपल कैन लिटरली अर्न दैट अमाउंट ऑफ मनी। जी हाँ, वेल ऑफकोर्स इसके बारे में अभी और भी जो है वो इंडस्ट्री जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है और इसमें चेंजेस आएंगे और लोगों को ऐसे में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आर यू कंफर्टेबल विद दिस थिंग? मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग एंड पीपल कैन अर्न मनी, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि फेसेस जिसका इस्तेमाल, जो कि लोगों के फेस थे, उनका इस्तेमाल जो है वो ऐसे कहीं नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, AI का वर्ल्ड है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर हो सकता है। सो कहीं पर अगर उस फेस का इस्तेमाल गलत जगह पर होता है या नहीं होता है, तो कंपनीज जो कि लाइसेंस कर रही है वो तो कहीं ना कहीं आंसरेबल होंगी, लेकिन वो किस हद तक आंसरेबल होंगी वो एक चीज है। एंड आर यू कंफर्टेबल, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप कंफर्टेबल भी हो ऐसा करने में कि आप अपना फेस जो है वो लाइसेंस कर रहे हो? इट्स जस्ट लाइक एन एडवर्टीजमेंट, जैसे कि जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो, जो एक्टर्स एडवर्टीजमेंट करते हैं वो लिटरली अपना फेस जो है वो किसी कवर के लिए जो है वो देते हैं, लाइसेंस करते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट बट इन अ मोर एडवांस्ड वे। जी हाँ, पहले उसका इस्तेमाल थोड़ी जगह पर ही होता था, लेकिन अगर ये डिजिटल और AI वर्ल्ड की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पर हो सकता है और कभी कभार गलत जगहों पर भी। सो मुझे लगता है कि इसके बारे में कोई ना कोई तो खतरनाक रूल होना चाहिए, अदरवाइज ये थोड़ी खतरनाक हो सकती है चीज। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी हाँ, आप मुझे बताइए, AI वीडियोस के लिए फेस लाइसेंस करना, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? जी हाँ, मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जरूर बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ संजय लीला भंसाली की नई मूवी जो कि 2027 के स्टार्टिंग में ही रिलीज होने वाली है, उसके पोस्टर्स आ गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, लव एंड वॉर। और मैं आपको क्या बताऊं, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि लव एंड वॉर क्या है। बेसिकली एक मूवी है जो कि 70s और 80s के पीरियड्स में सेट है। जी हाँ, और यहां पर संजय लीला भंसाली ने चूज किया है रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल को। जी हाँ, एंड गेस व्हाट, उसके पोस्टर्स रिलीज कर दिए गए हैं सोशल मीडिया पर। इसके पोस्टर जो हैं वो देखे जा चुके हैं और यहां पर रणबीर कपूर इन अ मस्टैच हॉट एंड हैपनिंग अवतार में नजर आ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एक बाजू में उनको चोट लगी हुई है, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नो व्हाट, दिस इज लव एंड वॉर, वेयर इज लव देयर इज वॉर, एंड देयर इज वॉर वेयर इज लव। जी आप लोग बोलो कि नीवे शर्मा क्या कह रही हो, वेल जहां प्यार है वहीं वॉर है, मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि लड़ना पड़ता है प्यार के लिए, ये तो पहले ही बहुत लोगों ने कह दिया है। सो या आलिया भट्ट का पोस्टर भी रिलीज हो चुका है और वो भी एकदम स्लीक लग रही है, मतलब जैसे वो बबली सी यहां दिखती है ना वैसी वो नहीं दिख रही, शी इज लुकिंग शार्प एंड मोर ग्लैम than ever। जी हाँ, and विकी कौशल भी वैसे लग रहे हैं। So basically पूरी की पूरी स्टार कास्ट में तीन जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आ गए हैं। नाउ वी डोंट नो हुज हीरो हुज विलन, और कोई विलन है भी या नहीं, या कोई हीरो है भी या नहीं। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा ये बात थोड़ी बनी नहीं, क्योंकि इंडियन मूवीज बिना किसी विलन के कैसे खत्म हो सकती है, मतलब हीरो होता है विलन होता है, दैट्स हाउ इंडियन मूवीज वर्क। तो चलिए, मुझे नहीं पता इसकी कहानी क्या है, लेकिन आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। और अगर आपने ये पोस्टर्स देखे हैं जो कि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन पोस्टर्स हैं, अगर आपने भी देखे हैं तो क्या ख्यालात हैं आपके लव एंड वॉर को लेकर। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूं कि संजय लीला भंसाली जो भी बनाते हैं ना बड़ी शिद्दत से बनाते हैं, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मूवी, बट द थिंग दैट आई नो is that the movie जो है वो बनाई गई है संजय लीला भंसाली की तरफ से, और वही हमारे लिए काफी है। नाउ आई एम लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: For aap sun rahe hain Radio Briswani.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani pe.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
13: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
14: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
13: ऐसा क्या खास है वहाँ?
14: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
13: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
14: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक. फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
15: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर बर्थडे विश करने का वक्त आ गया है द चॉकलेटी बॉय ऑफ बॉलीवुड को. जी हाँ, अब आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन इनके साथ आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ. वही इंसान जिसको चॉकलेटी बॉय की जो टैग है वो बहुत स्टार्टिंग में ही मिल गया, वही बंदा जिसने बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रीज को डेट किया है. जी हाँ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ भी खतरनाक, पर्सनल लाइफ भी खतरनाक, और वही बंदा जो कि अब कुछ वक्त में आपकी फिल्म स्क्रीन पर, थिएटर्स की स्क्रीन पर जो है वो वापसी करने वाला. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर रणबीर कपूर. कपूर खानदान का वो शहजादा जो कि आजकल रूल कर रहा है. जी हाँ, सो जैसे मैंने आपको बताया कि लव एंड वॉर के जो पोस्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा. यहां पर आज है जन्मदिन रणबीर कपूर का, तो सबसे पहले हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद रणबीर जी आपको. और हम यही कहेंगे कि ये साल भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, आप सक्सेस की सीढ़ियां ऐसे ही चढ़ते रहें, और मैं तो कहती हूं कि पर्सनल लाइफ में भी आपका जो जिंदगी है वो खिली खिली से रहे. यही हमारी आशा है, यही हमारी दुआ है. और इसी के साथ हेल्थ वेल्थ सब कुछ हम आपको विश कर रहे हैं, इस साल खुशियां विश कर रहे हैं. और ये रहा गाना, क्योंकि रणबीर कपूर का जन्मदिन है तो ऑफकोर्स रणबीर कपूर का कोई गाना तो प्ले करना पड़ेगा. क्या आप जान सकते हैं मैं कौन सा गाना प्ले करने वाली हूँ? गेस कीजिए. अरे थोड़ा तो कीजिए. अरे अरे, ये है तुमसे ही तुमसे, फ्रॉम द मूवी अनजाना अनजानी, आप सबके लिए.

जी दोस्तों, और इसी के साथ मिस्टर गेट्स भी आ गए हैं यहाँ पर कुछ बोलने के लिए, और मुझे आपको ये बताना है कि उन्होंने क्या कहा है। सो मिस्टर बिल गेट्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि काफी सुर्खियों में बने हुए थे एप्स्टीन फाइल्स में अपने जिक्र की वजह से, और ना सिर्फ जिक्र, उनकी फोटोज, उनकी वीडियोज और क्या क्या नहीं मिला है। बट वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, वी आर गोना टॉक अबाउट हिज स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, जो कि काफी सुर्खियों में बनी है, और ये स्टेटमेंट देने वाले वो पहले व्यक्ति नहीं है। इसके पहले भी बहुत से लोगों ने, जो कि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो ये बात कह चुके हैं। जी हाँ, सो बिल गेट्स ने कहा है कि एआई कुड बी पावरफुल इनफ टू कॉज अ बिलियन डेथ्स ऑन द करंट कोर्स ऑफ एंड स्पीड, देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ अ नेट नेगेटिव आउटकम। जी हाँ, सो ये कहना है बिल गेट्स का। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि बिल गेट्स कोई अकेले इंसान नहीं है ये कहने वाले, इससे पहले भी काफी लोग जो हैं वो कह चुके हैं ऐसा। कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे जो फादर ऑफ एआई माने जाते हैं, जिन्होंने ये सब शुरू किया था, स्टार्टेड इट ऑल, उन्होंने क्विट किया इसको, और जब भी वो किसी इंटरव्यू में जाते थे और उनसे पूछा जाता था कि यू आर द पायनियर ऑफ दिस फील्ड, सो व्हाई डिड यू स्टॉप, तो उन्होंने एक ही चीज कही कि मुझे पता है कि इसके पोटेंशियल खतरे कितने ज्यादा हो सकते थे, जब मुझे पता चला मैंने इस फील्ड को छोड़ दिया। पहले मुझे लगा कि ये चीज इंसानों को और आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी, लेकिन हम अपने लिए खुद ही खाई और खड्डा खोद रहे हैं। जी हाँ, सो ये कहना है फादर ऑफ एआई का। जी हाँ, और यहां पर बिल गेट्स भी यही कह रहे हैं। बट बिल गेट्स जो है, उनसे मेरे दो तीन सवाल ये भी हैं कि जब आप प्लान कर रहे थे कोविड, तब आपने सोचा था, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, इट्स अ फैक्ट एप्स्टीन फाइल में मेंशन था कि कोई एक पेंडेमिक ये प्लान कर रहे हैं, जिसको प्लान करने के बाद ये बहुत सारे लोगों को परेशान करेंगे, इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। जी हाँ, इन फैक्ट बिल गेट्स और फाइजर के सीईओ को बुलाया गया था उनके स्टेटमेंट के लिए कि ये बताओ कि अगर तुमको वैक्सीन से पैसा कमाना था, इसलिए तुमने ये सब किया, और वैक्सीन में तुम कुछ इंसानों की बॉडी में डालना चाहते थे, जिसकी वजह से तुमने ये सब किया। सो बेसिकली होता यही है, जब भी ये बड़े लीडर्स, बड़े बिजनेसमैन ये देखते हैं कि जो मैट्रिक्स उन्होंने बनाया है, लोग उनके मैट्रिक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक नया नेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, पेंडेमिक बनाया, पेंडेमिक को ठीक करने के लिए और उससे निपटने के लिए वैक्सीन बनाई, एक ऐसी वैक्सीन जो कि शायद इंसान अपनी बॉडी में ऐसे नहीं डालते, लेकिन फिर जब कोविड आया और कोविड से बचने की कोशिश हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें कोविड से बचना है, हमें जिंदा रहना है, और इसलिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, वैक्सीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम तैयार हैं उसके लिए, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। जी हाँ, फाइजर, वही कंपनी जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी कोविड की, उन्हें और बिल गेट्स को बुलाया गया था कि क्यों आपने ये सब किया और क्या था आपकी वैक्सीन में। जी हाँ, एंड आई एम नॉट जस्ट मेकिंग एनीथिंग अप, इट इज अ फैक्ट, इट्स अ फैक्चुअल थिंग। एंड यहां पर बिल गेट्स अब ये कह रहे हैं कि एआई कुड कॉज अ बिलियन डेथ। वेल, जो तुम लोग प्लान कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। नाउ आई एम नॉट इन अ सपोर्ट ऑफ एआई और एनीथिंग, बट द थिंग इज कि बिल गेट्स इज नॉट अ दूध का धुला हुआ इंसान, एंड वट एवर ही सेज, आई एम नॉट गोना ever ever ever trust this man, and I would tell you to do so. जी हाँ, और मैं आपको भी यही कहूंगी कि आप भी मत कीजिए, because this person is so hypocritic, और ये इतने ज्यादा खतरनाक लोग हैं कि ये अब हमारे natural resources को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। Look at the situation with AI data centers, and can you imagine, Bill Gates is the biggest land owner in America. जी हाँ, एंड नॉट जस्ट अमेरिका, दुनिया के बहुत सारे कोनों में इन्होंने जमीनें खरीदी हुई हैं। किस लिए? बिकॉज नाउ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल सीड्स, एंड दैट इज समथिंग हमें बहुत ही जल्दी इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए, एंड आई थिंक हमें इसके खिलाफ कुछ कहना भी चाहिए। लेकिन क्या हम ये कर रहे हैं? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मैट्रिक्स में इतने खतरनाक तरीके से उलझे हुए हैं कि हमारे पास ये सोचने का वक्त भी नहीं है। या दैट्स व्हाट दे डिड। सो या, बिल गेट्स का कहना कि एआई कॉज कर सकता है 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की डेथ, इट कैन बी ट्रू बिकॉज ही इज नॉट द जस्ट द ओनली पर्सन हु सेड इट, बट देर आर मेनी वेज जहां पर ये हमारे लिए अच्छी चीजें प्लान नहीं कर रहे हैं, सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
4: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आगे बढ़ने का और जरा खबरों की तरफ रुख करने का। क्या चल रहा है खबरों में, क्या हो रहा है दुनिया में, आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत यमन से। यमन, 30 हूती लड़ाकों और 8 आम लोगों की मौत का दावा। हूती विद्रोहियों ने कहा बदला लेंगे। जी हाँ, यमन के हूती समूह से जुड़े सूत्रों के ने न्यूज एजेंसी AAFP को बताया कि रविवार को ताइज क्षेत्र में हुए हवाई हमलों में उनके लगभग 30 लड़ाके और 8 आम लोग मारे गए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार ने दावा किया है कि उसने हूती सैन्य शिविरों और वाहनों को निशाना बनाया। हूती स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमला ताइज प्रांत के माविया चौराहे पर स्थित बाजार की दुकानों पर हुआ। हूती सैन्य प्रवक्ता साया सरी ने कहा कि उनकी ओर से इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। यमन सरकार के सैन्य प्रवक्ता कर्नल माजिद अब्दुल्ला अल नुजेली ने कहा कि सेना ने 72 घंटों में 756 सटीक और हमले किए, जिनमें 2,316 हूती लड़ाके और 4 ईरानी विशेषज्ञ मारे गए। अब अल मसीरा टीवी ने दावा किया कि यह हमला सऊदी लड़ाकू विमान ने किया है। हालांकि सऊदी पक्ष की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौरतलब है कि यह घटना उस समय हुई जब हूती और यमनी सरकार समर्थित बलों के बीच लड़ाई और भी

जी दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और वहीं भारत से भी खबर है एक जगह से जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो अपेरेंटली भारत की एक यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हालात पर पुलिस ने दिया अपडेट। जी हां, वहां पर बहुत बड़ा हुड़दंग हो गया है, प्रोटेस्ट हो गया है। और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, आइए जरा वही आपको बताते। सो पंजाब के जलंधर के पास स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अब हालात सामान्य होने की बात पुलिस ने कही है। इस मामले में 5 लड़कों को डिटेन किए जाने की जानकारी सामने आई है। सो 27वीं बटालियन की कमांडेंट गुरमीत कौर ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने बताया कि डिटेन किए गए लड़कों के पास से एक दातड़ और वाकी टॉकी सेट बरामद हुआ। पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी। बीबीसी के सहयोगी पत्रकार प्रदीप शर्मा के अनुसार कुछ छात्रों ने कैंपस में एक छात्रा के साथ रेप होने का आरोप लगाया है। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले को तुरंत दबाने का दबाव बनाया, इसी वजह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि लड़की कौन है। छात्रों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इन आरोपों को अफवाह बताया है। संस्थान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ऐसी खबरें पूरी तरह से अफवाह है और यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं एडीजीपी फैयाज फारूकी ने कहा कि कैंपस और सभी छात्र सुरक्षित हैं। समाचार एजेंसी AANIA से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। AGDP ने कहा कि अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कोई भी समस्या नहीं है। अभी पूरा ध्यान कैंपस को सुरक्षित रखने और बच्चों को सुरक्षित रखने में है, उनमें कोई पैनिक ना हो। हम परिजनों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कैंपस सुरक्षित है, सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत यहां पर नहीं है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ब्रिटेन में भी कुछ हुआ है। आइए जरा बात करते हैं, ब्रिटेन के खबरों की बात हो रही है। ब्रिटेन के एक एयरबेस के पास आतंकी वारदात की तैयारी के शक पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, सो ब्रिटेन में RAF फेयरफोर्ड एयरबेस के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों पर आतंकी वारदात की तैयारी और विस्फोटक संबंधी अपराधों का संदेह है। दरअसल पुलिस को रविवार देर रात एयरबेस की ओर जाते हुए 3 संदिग्ध वाहनों की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा कारणों से एयरबेस के पास स्थित वेलफोर्ड गांव के दर्जनों घरों को खाली कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों को रात भर अपने घरों में लौटने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। ब्रिटिश सेना की एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम एयरबेस के पास मौजूद वाहनों की जांच कर रही है। मामले की जांच काउंटर टेररिज्म पुलिस के नेतृत्व में चल रही है। इलाके में करीब 400 मीटर की सुरक्षा घेरा बनाया गया है। आपातकालीन सेवाओं की बड़ी तैनाती के बाद तहत डेजर्टस एरिया रिस्पांस टीम को भी मौके पर भेजा गया है। हैजर्डस एरिया रिस्पांस टीम को भी मौके पर भेजा गया है। जी हाँ, अमेरिकी सैन्य अड्डा होने के कारण बड़ी सतर्कता। जी हाँ, सो RAF फेयरफोर्ड का अमेरिकी सेना का साथ लंबे समय से संबंध रहा है और यहाँ अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियां होती रही हैं। हाल ही में इस एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई के अमेरिकी युद्धक विमानों के स्टेजिंग पोस्ट के तौर पर भी किया गया था। अमेरिकी वायुसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसके कर्मचारी सतर्क हैं, लेकिन उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी विशेष जानकारी देने से इनकार किया। वहीं प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम को एयरबेस के पास की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी दी गई। उन्होंने स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमजोर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमजोर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omzorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
5: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
6: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM और शो चल रहा है इवनिंग वाइब। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मिस्टर ट्रम्प, बिकॉज ट्रम्प बीइंग ट्रम्प ऑफकोर्स वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हमें वो टॉपिक देते रहते हैं बात करने का, बिकॉज वी वॉन्ट टॉपिक बट ट्रम्प दे रहे हैं। तो आइए जरा उसकी सराहना करते हैं, क्योंकि यहीं मैं उनकी सराहना करने वाली हूँ टॉपिक देने के लिए, इसके बाद उनकी जो है वो खिल्ली उड़ने वाली है। सो आपको बताया कि शी जिनपिंग अभी कुछ दिन पहले यहां से होकर गए हैं और वो जो उनकी जो विजिट थी वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रही, ऐसा कहना है अमेरिका, लेकिन वो कितनी प्रोडक्टिव रही है हम सबको पता है। 2 महीने के लिए दोनों कंट्रीज ने अपने अपने टैरिफ्स में रोक लगा दी है कि वो नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से क्या होगा नोबडी नोज। जी हाँ, सो ट्रम्प जो है एक बहुत ही जबरदस्त होस्ट बने हुए थे, बेसिकली वो सर्कस के जोकर बने हुए थे और वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि बस अभी मैं हंसा के रहूंगा। मुझे सच में लगता है कि कहीं उन्हें इश्क या मोहब्बत तो नहीं है शी जिनपिंग से, लिटरली। मतलब कभी आप देखोगे कि जिन्हें, मतलब जब हमें किससे प्यार होता है ना, तो हम लोग उनके अराउंड बड़े ही चुलबुली बातें करते हैं, मतलब वी ट्राई टू बी फनी, है ना, मतलब हम उनकी अटेंशन जो है वो पूरी तरह सीख करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स व्हाट ट्रम्प वाज डूइंग। सो अगर मुझे ये नहीं पता होता कि ट्रंप को जो है वो औरतों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेमेनाइजर इन द वर्ल्ड. तो मैं सोच लेती कि उन्हें मोहब्बत है मिस्टर शी जिनपिंग से. लेकिन चलिए वो बात छोड़ते हैं, उसके आगे की बात करते हैं. सो वो उनको हंसाने की कोशिश कर रहे थे. वो उनको एक ऐसी जगह पर लेकर गए व्हाइट हाउस में जहां पे सारे के सारे प्रेसिडेंट्स जो कि अभी तक हुए हैं उनकी फोटोज लगी हुई थी. और जब वो बाइडेन की फोटो के सामने गए तो बड़े ही अच्छे से वो वहां पर बाइडेन की खिल्ली उड़ा रहे थे. और वहां पर वो देखकर फॉर अ चेंज शी जिनपिंग को भी हंसी आ गई. ही वाज लाइक या दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग. अब वो अंदर से हंस रहे थे, बाहर से हंस रहे थे, या उनकी बेवकूफी पर हंस रहे थे, नोबडी नोज. एंड वो थोड़ा सा देखना और परखना जो है वो मुश्किल है. बट ऑल इन ऑल वहां पर पूरी तरह से ये सारी मीटिंग हुई. और अब जो है शी जिनपिंग अपने घर चले गए हैं एकदम नी हाओ करके. मतलब नी हाओ तो चलो हेलो होता है कि बाय बाय करके जो है वो चले गए हैं. और वहां पर ट्रंप जो है वो मुझे लगता है उनकी याद में बहुत ज्यादा लीन हो गए हैं. मतलब मुझे लगता है कि वो सैड हो गए हैं. चलिए एक और चीज बताते हैं ट्रंप की सैडनेस में इजाफा करने के लिए लोगों की कमी नहीं है. जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है वो $105 के ऊपर चली गई है. जी हाँ, आपने सही सुना, $105 प्रति बैरल के ऊपर चली गई है. और ये ट्रंप ने किया है क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को 6 दिन के लिए नहीं खोलना चाहिए, हमें नहीं खोलना, लेकिन मैं जब पूरी तरह से लड़ाई खत्म कर दूंगा तो सब कुछ तेल सस्ता हो जाएगा, तो आप सब बैठे रहिए, एकदम दिल थाम के बैठे रहिए, मैं आपका तेल एकदम पूरा सस्ता कर दूंगा. इट्स जस्ट दैट कि आई नीड टू वर्क ऑन इट एंड दैट्स व्हाट ही सेड. जी हाँ, जो ईरान ने प्रपोज किया था वो उन्होंने मना कर दिया और उसकी वजह से ब्रेंट क्रूड और भी ऊपर चला गया. चलिए अब बात करते हैं कनाडा की, क्योंकि कनाडा भी उनके नाक में दम दिए हुए हैं आजकल. और वो तो देगा ही, क्योंकि कनाडा के नाक में दम मिस्टर ट्रंप देते हैं. तो कनाडा ने सोच लिया है कि ये बंदा जो है वो अपनी करता रहता है, इसको नाम चेंज करने की बहुत जल्दी रहती है ना, बहुत मजा आता है ना, चलो हम भी नाम चेंज करते हैं. तो अपेरेंटली कनाडा में एक ट्रंप एवेन्यू है जिसको चेंज करके अब उसका नाम कुछ और बनाया जाएगा. मतलब ट्रंप का नाम चेंज कर दिया जाएगा. अब आप ही नहीं हो जो सिर्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका और लेक ओंटारियो को लेक अमेरिका बना सकते हो, कनाडा भी बता रहा है कि हम भी कर सकते हैं बेटा, हम भी कर सकते हैं. सबसे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, हमारे पास पानी है, हमारे पास पेड़ है, सब कुछ है हमारे पास, तुम्हारे पास क्या है? टॉयलेट पेपर तक नहीं है तुम्हारे पास. या दैट्स व्हाट कनाडा सेज अपेरेंटली, बिकॉज या वो मोक करते हैं उन्हें. सो ट्रंप एवेन्यू का नाम चेंज हो गया है और अब ये बात ट्रंप को राज बिल्कुल नहीं आएगी. आई वंडर व्हाट ही इज गोना डू नेक्स्ट, क्या चेंज करने वाले हैं वो. या सो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया सब कुछ. बट डेफिनेटली अगर आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी जहां पर शी जिनपिंग और ट्रंप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो जैसे ट्रंप उनको हंसाने की कोशिश करते हैं, रिझाने की कोशिश करते हैं, क्या आपको भी लगा कि उन्हें इश्क है, मोहब्बत है शी जिनपिंग से? जरूर मुझे बताइएगा. इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। तो आप भी आ जाइए, सवार हो जाइए इस सफर में हमारे साथ, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं पुराने गाने, फरमाइशें भी होंगी पुरानी, और साथ में साथ होगा पुराने किस्सों का। जी हाँ, जो सबसे पहले खूबसूरत सा गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो बहुत ही प्यारा है, और उसका नाम है बिंदिया चमकेगी। जी हाँ, आप लोग बोलोगे ये कहाँ से याद आ गया, आई डोंट नो, आई थिंक करवा चौथ आ रहा है बहुत ही जल्दी, तो शायद इसलिए बिंदिया चमकेगी मेरे दिमाग में आ गया था। आई वाज लाइक ओके ठीक है, लेट्स प्ले द सॉन्ग, लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट, और उसके बाद हमारे पास फरमाइश भी है जो कि हम प्ले करने वाले हैं। सो अगर आपके पास भी है कोई फरमाइश तो जल्दी से उसे लेकर आ जाइए यहाँ पर, ये गाना आप सबके लिए।

जहाँ गड्डी तुरदी है तो तुर जावे। ये खूबसूरत सा गाना जिनकी जुबान से आपने सुना उन्हें सुर कोकिला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैफी आजमी ने कहा है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। जी हाँ, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। जी हाँ, लता जी की बात हो रही है क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। जी हाँ, ऑफकोर्स लता जी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आर्ट, उनकी यादें, वो उनके किस्से, सब कुछ हमारे साथ हैं, और इसीलिए हमने शुरुआत भी की है लता जी के गाने से। जी हाँ, इट वॉज इन जस्ट द रीजन कि मेरे दिमाग में जो है वो चल रहा था, बिंदिया चमकेगी, करवा चौथ का ख्याल आया, और इसलिए मैंने प्ले किया। बट ऑफकोर्स द मेन रीजन वॉज लता जी, आज है उनका जन्मदिन। जी हाँ, अब लता जी के बारे में क्या ही कहा जाए। लता जी वो हैं जिसको जैसा बनने के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई लिटरली सुबह उठ के पूरा पूरा 24 घंटे भी मेहनत करेगा ना, तो भी वो नहीं बन पाएगा अगर कोई मेहनत से बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लता जी के पास मेहनत बहुत सारी उन्होंने की, लेकिन उनकी जो टैलेंट था वो एकदम सुप्रीम लेवल का था। उनकी आवाज, और ऐसे कहते हैं ना कि सुर कोकिला उन्हें इसलिए बोला जाता था क्योंकि उनकी आवाज कोयल जैसी थी। सो ऑफकोर्स आज हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके गाने भी आपको सुनाने वाले हैं। अगर आपका कोई फेवरेट गाना है जो कि लता जी का है, तो आप जरूर फरमाइश कीजिएगा, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम उनको याद करने का, ये परफेक्ट टाइम है। और इसी के साथ एक और गाना जो कि अलग है, जो कि रफी साहब का है, लेकिन ये फरमाइशी गीत है, हम इसलिए प्ले करने वाले हैं। और ये खूबसूरत सी फरमाइश है, आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से। गाने का नाम है ये रात बहुत रंगीन सही। जी हाँ, शगुन मूवी का ये गाना रफी साहब का गाया। थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा की तरह खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया सी फरमाइशें करने के लिए, एकदम माहौल बना देती हैं आपकी फरमाइशें। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, जब भी बात होती है ना लता जी के गानों के बारे में, तो लता जी की सबसे बड़ी खासियत, एक चीज जो उनको खास बनाती थी, वो थी कि उनकी आवाज, वेल ऑफ कोर्स जब उनके करियर की शुरुआत हुई थी तो बहुत छोटी उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, और बहुत छोटी उम्र से उन्हें काफ़ी लोग पसंद भी करने लग गए थे, उनकी गायकी को पसंद करने लग गए थे, लेकिन उनकी गायकी को रिजेक्ट भी किया गया है। मैंने आपको एक किस्सा शायद पहले भी सुनाया है कि कैसे मुगले आजम के जो मेकर थे, वो पहले इंसान थे जिन्होंने लता जी की गायकी को लिटरली ठुकरा दिया था। उन्होंने कह दिया था कि नहीं, ये गायकी जो है वो नहीं चलेगी क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा पतली है। अब लता जी की आवाज जो उनकी खासियत है, ऐसा भी कहा जाता था कि वही आवाज जो है उनके करियर की स्टार्टिंग में उनके लिए ड्रॉबैक का काम भी कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में काम करना शुरू किया, उन्होंने दूसरी लैंग्वेजेस में गाने गाने शुरू किए, और वो वक्त ऐसा था कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो किस लायक है। मतलब अगर लता जी गाएंगी तो फिल्म जो है वो सक्सेसफुल होगी, और अगर कोई अच्छी फिल्म बन रही है तो उसमें लता जी की आवाज तो जरूर होनी चाहिए, और उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था मुगले आजम। मतलब वही मेकर जो कि मुगले आजम के थे, जो पहले मूवी बना रहे थे, तब उन्होंने लता जी की गायकी को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही कहा कि मैं चाहता हूं तुम सारे के सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने जो है मुगले आजम के, तुम ही गाओ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी आवाज ही है इस बड़े बड़े से विजन की लायक। जी हाँ, सुनते आते हैं आपको एक और गाना उनका, जो कि अगेन मेरा फेवरेट है, और सिर्फ मेरा नहीं है, मुझे पता है कि जब मैं ये गाना प्ले करूंगी तो आप सबको भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि लता जी की आवाज इसमें फेनोमिनल है और ये गाना भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है।

जी हाँ दोस्तों, मतलब लता जी का जन्मदिन हो और हम ये गाना ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर लता जी की लाइफ जितनी अच्छी लगती थी ना, वो उतनी अच्छी नहीं थी, ये लता जी ने खुद कहा है। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान जब लता जी से बोला गया कि कैसा फील होता है, लता मंगेशकर हैं आप, कैसा फील होता है जब लोग आपको इतना रेवर करते हैं, तो लता जी कहती हैं, बड़ा ही मतलब एक यूनिक सा फेस बनाकर, मैं सैड नहीं कहूंगी कि बड़ा ही डिफरेंट सा फेस उन्होंने बनाया और एक्सप्रेशन उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर की भी अपनी परेशानियां हैं और अच्छा फील होता है जब इतना प्यार मिलता है, लेकिन सबको लगता है लता मंगेशकर की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी है, पर मेरी जिंदगी में भी अपनी खामियां हैं। जी हाँ, अपनी कमियां हैं, और मैं इतना ही कहूंगी कि ठीक है, लता मंगेशकर मुझे बनाया भगवान ने, इतना प्यार मुझे लोगों से मिला, लेकिन एक ही इल्तिजा मैं भगवान से करती हूँ, और वो ये है कि अगले जन्म मुझे लता मंगेशकर मत बनाना। आप खुद सोचिए, एक ऐसी लेडी जो कि लिटरली पूजी जाती है व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक और उनकी आवाज़ के लिए, लेकिन उनकी जिंदगी में भी कोई ऐसे एपिसोड्स रहे हैं, चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से वो नहीं चाहती अगले जन्म में लता मंगेशकर बनना। मतलब बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें अपने साथ खुशखामियां लेकर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक और चीज है जो लता मंगेशकर को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है। जी हाँ, और वो है उनका वो पर्सनल एस्पेक्ट और वो उनका स्टैंड लेना किसी भी चीज के लिए, जो कि शायद नहीं ले पाते बहुत से सिंगर अगर उन्होंने नहीं लिया होता। जी हाँ, मतलब ये जो आपने देखा है कि हर एक सिंगर को जो है वो क्रेडिट दिया जाने लगा, लेकिन ये पहले नहीं दिया जाता था, इसकी शुरुआत लता जी ने की थी। जी हाँ, लता जी ने कहा कि आप म्यूजिक डायरेक्टर को क्रेडिट देते हो, आप डायरेक्टर को क्रेडिट देते हो, आप एक्टर को क्रेडिट देते हो, लेकिन जो आवाज होती है उसके पीछे उसको आप क्रेडिट नहीं देते। एंड दैट्स व्हेन इट ऑल स्टार्टेड, दैट्स व्हेन लोगों ने, और इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सिंगर्स को क्रेडिट दिया जाने लगा। अदरवाइज आपको पता भी नहीं होता कि ये खूबसूरत सी आवाज जो आप सुन रहे हो, ये किसकी है, ये किसने गाया है ये गाना। सो ये लता मंगेशकर जी ने किया था उन्हीं की वजह से, जब उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं मैं आपकी फिल्म में गाना गाऊं तो आपको हमें क्रेडिट देना होगा, नहीं तो मैं गाना नहीं गाऊंगी, और उन्हीं की बदौलत आगे जितनी भी पीढ़ियां हुई सिंगर्स की, वो सबको क्रेडिट्स मिलने लगे। सो या अगर लता जी नहीं होती तो शायद ये होता भी ना। जी हाँ, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, एंड अगेन जो लास्ट सॉन्ग है वो एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, लता जी का ही है, और ऐसा कहा जाता है कि ये गाना लता जी की आवाज के बिना बिल्कुल अधूरा होता है, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा है, मेरे लिसनर ने कहा है। जी हाँ, उन्हीं की फरमाइश है, बहुत ही खूबसूरत, विशाल जी थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए। गाने का नाम है नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए। अगेन लता जी का जन्मदिन है और उन्हीं के गाने से प्रोग्राम को एंड करना सबसे अच्छी श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, मिलते हैं अब आपसे कल, बाय, सी यू, टाटा।

ना बदला में, ना बदला।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम,

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu aaj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है.
10: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में. सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिसबेन की कुछ खास खबरों के साथ. ब्रिसबेन लायंस ने रची इतिहास, जीती AFL ट्रॉफी. जी हां, ब्रिसबेन के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, ब्रिसबेन लायंस ने MCG में खेले गए रोमांचक फाइनल में फ्रीमेंटल को 7 पॉइंट से हराकर लगातार तीसरी बार AFL ग्रैंड फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया. वहीं ब्रिसबेन ब्रोंकोस NRLW के फाइनल में पहुंची. जी हां, महिला रग्बी में भी ब्रिसबेन का जलवा बरकरार है. ब्रिसबेन ब्रोंकोस ने गोल्ड कोस्ट टाइटंस को 20-8 से हराकर NRLW के ग्रैंड फाइनल में जगह बना ली है. वहीं एलिजाबेथ स्ट्रीट पर ट्रैफिक में बदलाव. ब्रिसबेन सिटी काउंसिल ने राहगीरों और ड्राइवरों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि एलिजाबेथ स्ट्रीट पर क्रेन लगाने का काम चलने के कारण आज रात से 1 अक्टूबर तक रात के समय ट्रैफिक रूट बदला रहेगा. वहीं ब्रिसबेन रिवर फेरी सर्विस प्रभावित. अगर आप आज ब्रिसबेन रिवर में फेरी से सफर करने की सोच रहे थे तो ध्यान दें, कर्मचारियों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के कारण फेरी सेवाओं में देरी और रुकावट का सामना जो है वो करना पड़ा है लोगों को. वहीं पहाड़ी सड़कों पर ड्रोन से सर्वे करने की सलाह. ऑस्ट्रेलियाई इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञों ने भारी बारिश से होने वाले भूस्खलन से बचाव के लिए सड़कों के किनारे पहाड़ी ढलानों का ड्रोन से हवाई सर्वे करने की सिफारिश की है. वहीं इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ. सबसे पहले बैंक हड़ताल टली, आज खुले रहेंगे सभी बैंक. जी हां, सबसे पहले राहत की खबर. सरकारी और प्राइवेट बैंक कर्मचारियों की जो 3 दिन की हड़ताल आज से शुरू होने वाली थी वो फिलहाल टल गई है. वहीं उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण को लेकर तनाव. मध्य प्रदेश के उज्जैन से खबर आ रही है जहां शाही मस्जिद के पास सड़क चौड़ीकरण के विरोध में लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. वहीं पंजाब की LPU यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन. पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ हुई घटना के विरोध में छात्रों ने भारी प्रदर्शन किया है. गुस्साए छात्रों ने नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम कर दिया जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. इसी के साथ डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए RBI की सलाह. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को कैश के साथ साथ डिजिटल पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी है. त्योहारों के सीजन को देखते हुए UPI और नेट बैंकिंग के सर्वर को और मजबूत किया जा रहा है. वहीं IIT बॉम्बे में छात्रों की मेंटल हेल्थ पर उठे सवाल. जी हां, IIT बॉम्बे के पूर्व छात्रों ने संस्थान के डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कैंपस में पढ़ाई और परीक्षाओं के कारण और दौरान छात्रों पर बढ़ते दबाव और मेंटल हेल्थ की समस्या पर चिंता जताई है. इसके साथ देश भर में मतदाता सूची अपडेट करने का अभियान. चुनाव आयोग की तरफ से देश के अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है. वहीं इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ. सबसे पहले नेपाल के पहाड़ों पर हिमस्खलन रेस्क्यू जारी. जी हां, एवलांच आया है नेपाल के पहाड़ों में. अब रुकते सबसे पहले माउंट हिमलुंग का. जी हां, जहां पर नेपाल के माउंट हिमलुंग में अचानक आए बर्फीले तूफान और हिमस्खलन के कारण 12 पर्वतारोही फंस गए हैं. रेस्क्यू टीमों ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और अब तक कुछ लोगों के शव बरामद किए गए हैं. वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर टली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से दिए गए युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में नए सिरे से बातचीत शुरू हो सकती है। वहीं ब्रिटेन में आतंकी साजिश के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। ब्रिटेन में काउंटर टेररिज्म पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि ये लोग अमेरिकी एयरबेस के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी के साथ इसराइल और यूएई के नेताओं के बीच गोपनीय मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात का अचानक दौरा किया है। इस मुलाकात में मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होने की खबर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का दौर फिर पटरी पर। जी हां, एयर अल्जीरिया ने 7 महीनों के लंबे अंतराल के बाद अल्जीरिया से दोहा के लिए अपनी डायरेक्ट फ्लाइट फिर से चालू करने का फैसला किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान दुनिया भर के नेताओं ने बदलती वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर अपनी बात रखी। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले विराट कोहली ने बनाया शानदार रिकॉर्ड। जी हां, कोहली ने वनडे क्रिकेट में 15,000 रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वो सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इसी के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाने वाला क्वार्टर फाइनल मुकाबला बारिश और खराब मौसम के कारण पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद बेहतर रैंकिंग के आधार पर भारत आगे बढ़ा। वहीं मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहिन सेमीफाइनल में। जी हां, बॉक्सिंग रिंग से अच्छी खबर है। लवलीना बोरगोहिन ने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए एक और मेडल पक्का कर लिया है। इसी के साथ वॉलीबॉल में भारत की लगातार दूसरी जीत। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए हांगकांग की टीम को एक सीधे मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
11: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
11: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
11: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
12: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटिफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierticket.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
13: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
14: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
13: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
14: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
15: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
16: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
15: हा? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
16: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
15: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
16: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
15: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
16: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
17: ओम्सॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844।

0: देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
0: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
0: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
0: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: पतली कमर मटका के

बिजली का बिल देख कर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: एक्सक्यूज मी सर, वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई।
4: क्या?
3: मॉडल नहीं आ रही।
4: क्यों
3: सर? आपकी मोबाइल पर उनका फोन आया था कि वो नहीं आएगी।
4: ला फोन दे।

हां जी रेगो, फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम है जी राजकुमार राव दा। था बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव नू वी वार वार वजन घटाउण ते वधाउण दी वजह नाल ट्रोलिंग चलनी पई सी। वजह यह कि राजकुमार राव दी कद काठी उन्नी विशाल नहीं हैगी, मतलब इन्नी वड्डी नहीं हैगी कि वह इस तरह के ट्रांजिशन नू तो बाद भी नॉर्मल लगन। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੁਬਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਸਕੂਲਰ ਤੇ ਹੈਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਵੀ ਵੇਟ ਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierticket.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierticket.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल श्रोताओं। जीवन आधार की नैया में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। जीवन आधार हमारी वो प्रस्तुति जिसके साथ हम करते हैं अपनी और आपकी सुबह की एक खास शुरुआत। आज भी स्मरण करेंगे उस परम शक्ति का, उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस वाहेगुरु का, उस जीजस का, जिसने हमें जीवन का सही संदेश दिया है, जीवन की सही शिक्षा हम तक पहुंचाई है और जिसके लिए हमारी सारी प्रार्थनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में इस एक अगले गीत के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। और गुरु की महिमा का मंडन हर धर्म में किया गया है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। गुरु ही है जो आपको जीवन का सही संदेश देता है, आपको ईश्वर से मिलाता है, उस सर्वशक्तिमान से मिलाता है, आपको आपके कर्मों की ओर लेकर जाता है और जीवन का सही पाठ पढ़ाता है। शायद इसीलिए भगवान ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने भी गुरु को खुद से ऊपर स्थान दिया है। आइए गुरु को नमन करते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जीवन आधार का आनंद ले रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी पर और अपनी सुबह को खास बना रहे हैं। दोस्तों, जब भक्ति कानों में पड़ती है, जब आपकी शुरुआत उसके साथ होती है जिसे आप मानते हैं, तो यकीन मानिए जीवन सरल हो जाता है, सार्थक हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। इसी मन को आनंद से भरेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

आज जिस दौर में हम और आप आ गए हैं, रिश्तों की मर्यादा भूल रहे हैं, रिश्तों की वैल्यू कहीं खो रही है। हम अक्सर अपनी जबान पर कंट्रोल ना करते हुए न जाने कितना कुछ कह देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, अगर बाद में आपको पछतावा भी होता है तो भी आप अपनी कही गई बातें वापस नहीं ले सकते। और रिश्ते एक गांठ से बंध जाते हैं, जिसे चाह कर भी आप कितना भी पछताएं, लेकिन उस गांठ के बिना उस रिश्ते को नहीं चला सकते हैं। इसी बात पर जीवन आधार में बढ़ेंगे आगे। आइए सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी सताक्षी के साथ।

हमारा और आपका सफर जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ, सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार। हम सब चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म में विश्वास करें, लेकिन ईश्वर का नाम हम सब तभी लेते हैं जब हम पर कोई विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है या कोई कष्ट हमारी जिंदगी में आता है। बिना कष्ट के ईश्वर को याद करने का समय हम में से किसी के पास नहीं है। आज कल परसों कर लेंगे पूजा या कर लेंगे आराधना, यही कहते हैं हम। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप दुख में ईश्वर को याद करते हैं तो दुख आने का इंतजार ही क्यों करना। अगर अच्छे दिनों में भी ईश्वर को याद किया जाए तो शायद वो दुख आपके जीवन में आएगा ही नहीं। इसलिए प्रार्थना करते रहिए, उस परमपिता से जुड़ते रहिए और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं जीवन का आधार, जीवन आधार। जी हाँ, जीवन के पन्नों को हम एक आधार दे रहे हैं, अपनी और आपके जीवन को एक नया अर्थ दे रहे हैं कुछ खास बातों और यहाँ पर हमारे पेश होने वाले कुछ खास गीतों के साथ। एक और ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

मेरा तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अक्सर जब भी आपको सफलता मिलती है तो एक घमंड, एक ईगो, एक अहम आप में घर कर ही जाता है, लेकिन ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, उल्टा अपने अहम को इतना ऊंचा कर देते हैं कि लोगों को आपसे भय हो जाता है, आपसे डर हो जाता है। याद रखिए, वही इंसान सही है, अच्छा है और संतुष्ट है जो अपना जुड़ाव आसमान पर पहुँच कर भी जमीन से रखे। इसी बात पर आगे बढ़ेंगे जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

ये था आज एक और फिर से हमारा जीवन के जुड़ाव से जुड़ा सफर जीवन आधार। कल फिर से सुबह की शुरुआत हम इसी सफर के साथ करेंगे और जब तक हम और आप कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और उस शक्ति को, उस परम पिता को, उस खुदा को याद करते रहिए, उससे जुड़ते रहिए। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते अदाब मेरे ब्रिस्बेन फैमिली, क्या हालचाल है मेरे प्यारे प्यारे ब्रिस्बेन वालों। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सुबह एकदम शानदार, फ्रेश और पॉजिटिव हो रही होगी। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चाने जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चाने का सफर, जहाँ पर सुबह की शुरुआत होती है अच्छी बातों से, खूबसूरत गानों और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। चाहे आप दोस्तों घर पर ब्रेकफास्ट बना रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, या फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हो, या फिर भाई अपनी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट पर निकल चुके हो, Wherever you are, let me be a part of your morning। दोस्तों आज है मंगलवार यानी कि ट्यूजडे। ट्यूजडे का मतलब है भाई मंडे की सुस्ती को पीछे छोड़कर ना अपने गोल्स की तरफ एक और कदम बढ़ाना। और सुनिए, आज खुद से एक वादा कीजिए, दूसरों का दिन अच्छा बनाने के चक्कर में अपना दिन खराब नहीं करना है, स्माइल भी करनी है, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है और अपने सपनों के लिए भी काम करना है। तो चलिए फिर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, चेहरे पर स्माइल लाइए, क्योंकि चांदनी के साथ आपकी सुबह होने वाली है सुपर हिट। आइए फिर सुनते हैं, ये ट्रैक करते हैं शुरुआत इस गीत के साथ अपनी इस प्यारी प्यारी मॉर्निंग को।

हाँ जी मेरे ब्रिस्बेन वालों, अब बात करते हैं आपके शहर की, यानी कि अगर हम बात करें कल की यानी कि 28 सितंबर की, तो ABC ब्रिस्बेन वेदर रिपोर्ट के मुताबिक साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में सोमवार और आज अगर हम बात करें मंगलवार को क्लाउडी और वेट कंडीशन रहने का अनुमान था, जिसके बाद सप्ताह के आगे के जो दिन है उसमें धूप लौटने की उम्मीद बताई गई थी। घर से निकलने से पहले आज का जो लोकल फोरकास्ट और रेन अलर्ट्स है वो जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप मॉर्निंग कम्यूट कर रहे हैं तो बारिश में ड्राइविंग करते समय एक्स्ट्रा सावधानी रखिए, गाड़ी से दूरी बनाए रखिए और जल्दबाजी में भाई बिल्कुल भी मत निकलेगा। और ब्रिस्बेन वालों, एक सवाल आपसे है, आपको बारिश वाली सुबह पसंद है जिसके हाथ में चाय हो और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही हो, या फिर ब्राइट सनी मॉर्निंग? मुझे तो भाई दोनों का अपना चार्म लगता है। अपना जवाब भेजिए और बताइए कि आपकी मॉर्निंग कैसी चल रही है। आइए सीख सा सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

आप सब सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। सो आइए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के न्यूज अपडेट की। स्पोर्ट्स लवर्स, आपके लिए एक अपडेट है। एबीसी ब्रिस्बेन की जो कल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो सॉक्रूज है उसकी ब्रिस्बेन में ब्राजील के खिलाफ होने वाली फुटबॉल भिड़ंत चर्चा में है। ऑस्ट्रेलियन डिफेंडर अजीज बिहिच ने भी ब्राजील की संभावित अटैकिंग रिस्पॉन्स का सामना जो है करने की रणनीति पर बात की है। मैच का लेटेस्ट शेड्यूल जो है और किक ऑफ टाइम ऑफिशियली फुटबॉल अपडेट से कंफर्म करिए। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ब्राजील जैसे मुकाबलों से आप किस चीज को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, शानदार गोल्स, डिफेंसिव स्किल्स या फिर स्टेडियम का माहौल, जरूर बताइएगा। और एक जरूरी रिमाइंडर ये भी है, अगर आप शहर में काम पर जा रहे हैं तो निकलने से पहले ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपडेट्स चेक जरूर कर लेना। इससे आप अपना कम्यूट बेहतर प्लान कर सकते हैं, खासकर अगर मौसम भी गीला हो। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

अब रुक करते हैं भाई इंडिया की तरफ, क्योंकि ब्रिस्बेन में रहने वाले हमारे बहुत से लिसनर्स की सुबह इंडिया की खबरों के बिना पूरी नहीं होती है। दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में महिलाओं के खिलाफ हाल ही में सेक्सुअल वायलेंस की घटनाओं के संदर्भ में अकाउंटेबिलिटी और लॉ इन्फोर्समेंट की जो भूमिका है उस पर जोर दिया है। ये खबर महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और न्याय व्यवस्था से जुड़े सवालों को फिर से चर्चा में लाती है। वहीं अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो स्पोर्ट्स की दुनिया से भी भाई एक अपडेट है। एशियन गेम्स कवरेज में भारत की जो ईशा सिंह है उन्होंने शूटिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया है, जबकि इंडियन स्क्वैश टीम ने जापान के खिलाफ जीत दर्ज की। एशियन गेम्स की कंपटीशन में इंडियन एथलीट्स के प्रदर्शन पर लगातार नजर बनी हुई है। वहीं पर थोड़ी ही देर बाद बात करेंगे इंडियन की इकोनॉमी भाई क्या कह रही है। थोड़ी देर बाद आप जुड़े रहिए मेरे साथ ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

आप सभी सुन रहे हैं अपनी दोस्त आरजे जानी जैन को रेडियो ब्रिस्वानी में। प्रोग्राम चल रहा है जाने का सफर। आइए बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी का क्या हाल है भाई। बिजनेस न्यूज में रियूटर्स की जो रिपोर्ट है वो बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस और यूएस ईरान तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे ग्लोबल डेवलपमेंट्स का असर जो है वो इन्वेस्टर्स की मार्केट एक्सपेक्टेशंस पर पड़ सकता है। तो ये थी भाई कुछ अहम अपडेट्स। खबरें जानना जरूरी है भाई, लेकिन हर खबर के बीच अपने सुबह को पॉजिटिव रखना भी उतना ही जरूरी है। वहीं पर हम बात करेंगे थोड़ी ही देर बाद फिल्म में तड़का, यानी कि अपने भाई फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है। बॉलीवुड गॉसिप नहीं है तो भाई काहे का शो है ना भाई, कुछ तो गॉसिपिंग्स बनती है। आइए शिक्षा सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, तो आइए फिर मुड़कर आ ही गए हैं बॉलीवुड गॉसिप में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान खुराना की। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के एंटरटेनमेंट कवरेज में उनकी अपकमिंग फिल्म उड़ता तीर के प्लॉट को लेकर चर्चा सामने आई है, जिसमें कि एक पाकिस्तानी स्पाई के मेमोरी लूज के बाद इंडियन पैट्रियट बनने की कहानी का भी जिक्र है। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की अकॉर्डिंग अक्षय जो खन्ना है, उन्होंने मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में 33.26 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा है। अब बताइए आप किस तरह की बॉलीवुड फिल्म्स जो है वो देखना पसंद करते हैं, रोमांटिक कॉमेडी, थ्रिलर या फिर एक्शन। और एक बात तो माननी पड़ेगी, कुछ गाने ऐसे होते हैं दोस्तों जिन्हें ना सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। तो अब बारी है एक ऐसे ही म्यूजिकल थ्रोबैक का। भाई 90s का रोमांटिक हिट है, और कैसे ना मैं आपको सुनाऊं वही गाना, पहला नशा या फिर कुछ कुछ होता है। ऐसे ट्रैक्स अगर हम सुनते हैं ना, तो वाकई कुछ ना कुछ पुरानी यादें तो ताजी हो ही जाती है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो बिस्वानी।

हेलो मेरे दोस्तों, वंस अगेन जहाँ पर इतनी बातें होगी तो भाई मॉर्निंग मोटिवेशन को कैसे छोड़ दे। मेरे प्यारे लिसनर्स, आज की सुबह की एक छोटी सी बात अपने दिल में जरूर रखिएगा और जरूर उसको फोकस करिएगा। हम अक्सर अपनी लाइफ की जो तुलना है वो दूसरों से करने लगते हैं। किसी की जॉब अच्छी चल रही है, किसी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, किसी की लाइफ में सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखती है भाई। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हर इंसान की जो जर्नी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। आपकी जिंदगी में अगर कोई चीज आज नहीं हुई है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वो कभी होगी ही नहीं। अपनी मेहनत जारी जरूर रखिए, अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट कीजिए। आज किसी एक इंसान की तारीफ कीजिए, घर में किसी की मदद कर दीजिए, किसी पुराने दोस्त को मैसेज कर दीजिए और सबसे जरूरी खुद से भी प्यार से बात कीजिए। बिकॉज दोस्तों, यू डिजर्व द सेम काइंडनेस दैट यू गिव टू एवरीवन एल्स। मैं हूं आपके दोस्त जानी और रेडियो ब्रिसवानी पर मेरी यही विश है कि आपका आज का जो दिन है सुकून से निकले, मुस्कुराते रहें और अच्छी खबरों से भरा हो। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में। तो ब्रिस्बेन हमारी आज की मॉर्निंग जर्नी यही अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी सुबह का कुछ समय जो है अपने दोस्त आरजे जानी जैन और रेडियो ब्रिस्बेन के साथ बिताया है। जो लोग काम पर जा रहे हैं वो वेरी वेरी सेफ जर्नी। सो अगर आप घर संभाल रहे हैं अपने लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालिएगा, और जो भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि एक नया दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर जरूर आता है। आज मुस्कुराइए, किसी को मुस्कुराने की वजह दीजिए और अपने दिन की शुरुआत अच्छे इरादों के साथ और पॉजिटिव वाइब्स के साथ जरूर कीजिए। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरजे जानी जैन, जुड़े रहिए रेडियो ब्रिस्बेन के साथ, क्योंकि अच्छे गाने अच्छी बातें और अपनी जो कहते हैं ना मेहनत और आपकी अपनी आवाज, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो दोस्तों हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्यूसडे ब्रिस्बेन। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। नमस्कार, सत श्री अकाल और ढेर सारा प्यार। वंस अगेन टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रेस वाणी 1701 एम। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आईआरजीसी ने समुद्र में पकड़ा अमेरिकी जासूस। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सेना ने दावा किया है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका का दूसरा अत्याधुनिक मानव रहित अंडरवाटर व्हीकल रेमस 600 पकड़ लिया है। ईरानी सरकारी प्रसारक IRIB की प्रसारित रिपोर्ट के मुताबिक ये अभियान ईरानी सैन्य अधिकारियों के रणनीतिक जलमार्ग में सक्रिय अमेरिकी आतंकवादी सेना की दूसरी सबमरीन के खिलाफ चलाया गया। चुनिंदा दवाओं पर नहीं लगेगा टैरिफ, भारतीय दवा कंपनियों को अमेरिका से बड़ी राहत। भारत से अमेरिका भेजी जाने वाली कुछ खास दवाओं और दवा बनाने वाले कच्चे माल पर अब जीरो अमेरिकी टैरिफ लागू होगा। इससे अमेरिका को दवाएं सप्लाई करने वाले भारत के फार्मा सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है। और सुनते हैं भारतीय खबरें। कश्मीर के लॉन्च पैड छोड़ जम्मू इलाके में पहुंचे आतंकी। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की घुसपैठ रणनीति में बदलाव आया है। कश्मीर के पारंपरिक लॉन्च पैड अब जम्मू के पुंछ, राजौरी और कठुआ जैसे कठिन इलाकों की ओर खिसकाए गए हैं। सीमा पर स्मार्ट बाड़ और आधुनिक सेंसर से निगरानी मजबूत हुई है, जबकि आतंकियों को अब बड़ी संख्या के बजाय छोटे और ज्यादा प्रशिक्षित समूहों में भेजने की कोशिश हो रही है। बड़े हमलों की जगह प्रॉक्सी संगठनों, प्रचार और लक्षित हमलों पर जोर बढ़ गया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज, CJP ने दी आंदोलन की चेतावनी, मुंबई से लेकर असम तक विरोध। SIR को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। CJP ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए 2 अक्टूबर से देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं मणिपुर और महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर पुलिस ने भी प्रदर्शन कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
10: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
9: ऐसा क्या खास है वहाँ?
10: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
9: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
10: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
11: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
12: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय Aussies माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय Swedish Foods। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी, आपकी अपनी पहचान।

0: Okay. All right. Okay. बहुत प्यारा गाना था. थैंक यू सो मच. और दोस्तों, अगर आप भी कुछ सुनना चाहें तो डू गिव अस अ कॉल. हाँ, विल डेफिनेटली प्ले समथिंग फॉर यू.
1: यस.
0: ओके. होपफुली दिस विल प्ले.
1: ऑलराइट.

0: Okay. Father, son, and daughter-in-law. Yeah.
1: Okay.
0: आगे चलते हैं दोस्तों और ओके ऑलराइट वेकिंग अप ऑल नाइट वाचिंग द लिफ्ट ऑफ
2: ओके
0: आई एम पेइंग फॉर इट नाउ
2: यू पेइंग फॉर इट
0: या
2: शुड आई से वी ऑल पेइंग फॉर इट
0: या ओके
2: ऑलराइट व्हाट हैपेंड
0: व्हाट
2: आई थॉट यू वर प्लेइंग द नेक्स्ट सॉन्ग. You're okay, sleeping on the job,
0: yeah,
2: are you?
0: Yeah. Was it this one here?
2: Yeah. Thank you.

0: किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, क्यों प्यार करूं?
1: द बिग क्वेश्चन इज,
0: बिग क्वेश्चन है,
1: क्यों
0: सबको प्यार करना चाहिए ना? ओके.

0: यहाँ चल या के बात कर रहे हैं, उधर हम यहाँ जाने की बात कर रहे हैं दोस्तों। और अब जा रहे हैं, कल मिलेंगे। Am I happy?
1: Why are you sounding so dramatic?
0: Because I don't know whether I'm coming or going. चलो दोस्तों।
1: Okay, with this we will say namaste and goodbye, and hope you have an absolutely beautiful day.
0: Yes.
1: And we will be more awake tomorrow.
0: Yes.
1: How about that?
0: Yeah.
1: Yeah?
0: Yep.
1: Okay.
0: Take care.

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक रेडियो प्रस्थान पर एक बार फिर से आप सताक्षी के साथ। और मेरे साथ अब आप सुनने जा रहे हैं अपनी सुबह का सबसे बेहतरीन शो। ये शो है आपके अपने ब्रेकफास्ट का शो, इट हैपेंस। बेहतरीन इसलिए मियां मिट्ठू हम अपने इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम इस शो में आपसे बात करते हैं आपकी जिंदगी की, आप जो पाना चाहते हैं उसकी और जो आपके लिए जरूरी है उसकी भी। और इसके साथ ही साथ हम इस शो में प्ले करते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉर्निंग नंबर्स। तो चलिए, जब इतना प्यारा इतना खास शो है तो भला देर किस बात की है। अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। के प्लस टू रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ। इट हैपेंस।

वेलकम बैक रेडियो प्रसवानी पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों आगे बढ़ना है, ढेर सारी बातें भी आपके साथ करनी है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे आज के उस विश के साथ, उस खास सेगमेंट के साथ जिसमें हम उन्हें विश करते हैं जिनके लिए आज का दिन खास है। सो जिनका आज है हैप्पी बर्थडे, उन सबको उनके बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जी हाँ, हम यही तो चाहते हैं कि आपकी सारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, आबाद रहे, और यही हमारी विश भी है आज आपके लिए, और आपके लिए हमारा गिफ्ट भी है। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज उनका जीवन साथी उन्हें मिला था। ये साथ जो है, सात जन्मों का, ये आज के दिन ही जो है वो बंधा था। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आप यूं ही जिंदगी के कदमों से कदम मिलाकर चलते रहें और एक साथ चलते रहें। इसी विश के साथ अब हम विश करेंगे उन्हें भी जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और खास। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। यकीन मानिए आप जो भी चाहते हैं वो जरूर मुकम्मल होगा क्योंकि आपकी ख्वाहिश सच्ची और साफ दिल की है। आइए इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसवानी, सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ड ऑन ट्रस्ट।
2: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

सो वेलकम बैक इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रसवानी 1701 एम पर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास और खूबसूरत सफर में इस अगले ट्रैक के इस बार। यू नो, जब भी हम सोचते हैं कि हमें एक फ्रेश स्टार्ट करना है, एक नया स्टार्ट करना है, तो हम सोचते हैं कि यार जगह भी नई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि भाई नई शुरुआत नई जगह से हो तो क्या बात है। लेकिन देखा जाए तो नई शुरुआत के लिए नई जगह की नहीं बल्कि नए माइंडसेट की जरूरत होती है। एक नया तरीका, एक नया अंदाज और एक नई जर्नी जब साथ मिलकर शुरू होते हैं तो डेफिनेटली जिंदगी बहुत सारी नई चीज़ों से होकर गुजरती है। वहीं अगर आप नई जगह की तलाश कर रहे हैं अपने जिंदगी को या अपने गोल को रिस्टार्ट करने के लिए, तो फिर सिर्फ और सिर्फ जगह ही बदलेगी। आप में, आपके गोल में, आपके माइंडसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब तक माइंड को रीसेट नहीं करेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक फिर आप लाइफ को बेटर नहीं बना सकते और अपने गोल्स को उसी ढर्रे पर चलकर, पुराने ढर्रों पर चलकर आप अचीव भी नहीं कर सकते। चलिए फिलहाल इसी बात के साथ आपको आगे लेकर चलती हूँ। एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो ब्रसवानी 1701 एफएम।

जी हाँ, इट हैपेंस. आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 107.01 एम पर, और इस मॉर्निंग हो रही है आपके साथ कुछ बेहतरीन बातें हमारी. यूं तो सुबह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आती होगी, लेकिन वो सारी चीजें जो आप खुद अपने लिए प्लान करते हैं, वही आपकी सुबह की सबसे बेहतरीन प्लानिंग होती है. यू नो, वो सुबह की अपने साथ पी गई एक कप कॉफी भी हो सकती है, अपने लिए बनाया गया बढ़िया सा डिटॉक्स वाटर भी हो सकता है, और अपने लिए एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार करना भी हो सकता है, या फिर रेडियो पर बैठकर 2 मिनट शांति से सताक्षी को सुनना भी हो सकता है, अपने साथ की गई एक्सरसाइज भी हो सकती है. वो कुछ भी जो आप खुद के लिए इस मॉर्निंग प्लान करते हैं, उसके साथ आपकी मॉर्निंग और भी बेहतरीन हो जाती है. सो क्या है इस मॉर्निंग आपकी अपने लिए प्लानिंग, मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा. और फिलहाल चलिए आपको अभी आगे लेकर चलती हूँ एक और गाने के साथ. इसे सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए. इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 107.01.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices. वेलकम बैक, इट हैपेंस अनुरभ सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्पानी पर. और इट हैपेंस में चलिए, ये वक्त है आज के गानों की हैट्रिक का. तो गानों की हैट्रिक में पहला ट्रैक कौन सा है, आइए गुनगुनाते हैं.

जी हाँ, इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी पर। और इट हैपेंस में चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं आज के गानों के हैट्रिक के लास्ट ट्रैक के साथ। के प्लस रेडियो ब्रिस्वानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

या इट हैपेंस पर सताक्षी के साथ हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इस मॉर्निंग कुछ बहुत ही बेहतरीन और प्यारे से गाने। देखिए जिंदगी बहुत सारी चीजों को आपको सिखाती है और बहुत सारी चीजों से भरी हुई है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, तो मुझे लगता है कि जिंदगी पूरी तरह से डिपेंड है भूलने पर, जो किया है जो गलत किया है इनफैक्ट उसके लिए थोड़ा सा पछताने पर, और लाइफ ने जो आपको लेसन दिए हैं उनको याद रखने पर। लेकिन हम करते बिल्कुल इसका उल्टा है, अपनी गलतियों को हम कभी रिग्रेट करते नहीं, उस पर ध्यान देते नहीं है, चीजें हम भूलते नहीं हैं, और लाइफ के लेसन तो याद रखना जैसे लगता है कि हमें अपनी गलतियां याद रखने के लिए कहा जा रहा है। तो भाई इसीलिए लाइफ की इतनी सारी प्रॉब्लम से हम और आप घिरे रहते हैं। ख्याल रखिए ताकि जिंदगी बेहतरीन हो सके। और चलिए आपको एक और ट्रैक के साथ अभी आगे लेकर चलती हूँ, इसे भी सुनिए और मेरे साथ बने रहिए इट हैपेंस में सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

0: जब प्रस्वानी पर इस वक्त आपने सताक्षी के साथ आज की सुबह, आज की मॉर्निंग एक बार फिर से और हमेशा की तरह ये मॉर्निंग भी कई सारे प्रॉब्लम से घिर कर आई होगी। जी हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर एक सुबह की जर्नी जो है वो बिना किसी प्रॉब्लम के गुजर जाए। भाई लाइफ है और इस लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी साथ रहती हैं, जैसे कि उसके सॉल्यूशंस रहते हैं। तो हाँ, यही तो आपसे कहना है कि लाइफ की जर्नी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपने साथ वो लेसन्स लेकर आती हैं जो उसको सॉल्व करवाते हैं। लेकिन बस एक चीज है जो इस बीच में हम भूल जाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन उन्हीं के साथ आए और हम उनको लेकर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो बॉस, जिंदगी में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो, है ना। तो एक्सपीरियंसेस जो हैं आपके, अगर आप उनको गौर करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस के दम पे आप उन प्रॉब्लम्स को हल भी कर पाएंगे और उन प्रॉब्लम्स को जीत भी पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए आप अपनी प्रॉब्लम से निकलने के तरीके सोचिए। मैं फिलहाल आपके लिए प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।
1: किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया।
2: तुझे पता माँ क्या कहती थी? कहती थी बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव खुद आते हैं, जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660।
1: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ।